जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभु जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते राखिया, गणका पड़त पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए, राखो दास पाठ की लाज।

शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सुकहु टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै।

क्योंकि अनेकों ने मैंने कहा जो कोई कला ही नहीं वरती, गुरु ने कोई कला नहीं वरताई, तो कौन देते कला तो वरतांदे ने कला बास मदारी, गुरु नहीं वरतांदे होंगे कि नाल से कचे से कचे ये छुपा जा प्रभ लो जन के आवत ला जा। गुरु कला बाज नहीं है, मदारी नहीं है, गुरु तमाशा करने वाला नहीं है, गुरु सच नाल जोड़ने वाला है। और सच जितना गहर गंभीर होगा, सच के मार्ग से जेड़ा जितना ज्यादा चलेगा औखड़ा ही औखड़ा है। इस वास्ते सच के मार्ग से चलना बड़ा औखा है। काफले या बह गए या मिट गए, रास्ते सुनसान अगर आते हैं, उस बाल में कहना पे कि सच के रस्ते कुछ मैनू सुनसान दिखाई देंगे। कारण बिखड़ा रस्ता है, पहाड़ी रस्ता है, ऊंचाइयां ने आम हमवार जो है ये रस्ता नहीं है। तो दुख के समय से कुछ सिखा ने भी बिदावा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लिख दिता, कह दिता से महाराज हूं तुम साढ़े गुरु नहीं, असि थोड़े सिख नहीं, क्यों तुम आप संकट देखो तो असि थोड़े सिख बनी है, असि भी संकट च पही है, असि भी सिखा दे पही है। तो बिदावा लिख दिता कि नामदेव का फैसला गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी है कि साहेब संकट वे सेवक भजे। अगर गुरु संकट देख है, साहेब संकट देख है, तो सेवक आते हूं मैं चढ़िया गुरु, तो उसका अंजाम की आंदा है। यह गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के बैठे परम भगत श्री नामदेव जी महाराज का फैसला, चिरम काल में जीवे दो कुल लगे, ज्यादा चिर जी नहीं सकेगा, आयु घट गई। अगर उन्हें वह द्रोह भी पा, अगर उसने धोखा दिता, अगर उसने दिता के समय साहेब का साथ छड़े और इस वास्ते छड़े बेहू कौम धर्म ये पंथ आकर गुरु है, तो पंथ इस वक्त संकट है, तो क्षमा करने बथेरिया ने बिदावे लिखे हुए हैं। तो इन्हों बिदावे लिखण वाले नामदेव जी महाराज का कहना है किरण काल में जीवे ज्यादा दिन नहीं जी सकेंगे, तो दो कुल लगे, दो कुला इन्हों लजाए मान हो लानत पैदा ही रहेंगे, लोग फिटकारा पाते ही रहेंगे। तो दो गल मैं बार बार नामदेव जी महाराज में पढ़ता रहा, तो जेड़ा धोखा देगा वक्त सिर मालिक नू और खास करके संकट दे, एक तो ज्यादा नहीं जीवेगा, जिन्ने दिन उसने जीना तो उसने अपनी आयु घटा ली। दूसरा दोनों फुला उस दिया लगाएमान हो शर्मसार हो उसके लानत पैदा रहनगियां, फटकार जैदिया रहनगियां। तो गल स्पष्ट है कि वास्तविक साथी कौन जो दुख का साथी बने, कसौटी दुख है और तो कोई नहीं है। इन्नी मेहनत कर रहे हैं कहने कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोय, तो राम की कसौटी की है, गुरु की कसौटी की है, जिसे झूठा पूरा नहीं उतरता, झूठा का मतलब दुनिया का। राम की कसौटी है दुख, कि हम दुख में साथ देता है कि नहीं, कि हम दुख में शुकराना करता है कि नहीं, तो दुख देख भी हूं लिखित रहा है कि नहीं, बस एक कसौटी है। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोय, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा। मैं जब इस ढंग गुरु घर का इतिहास पढ़ना तो मैंने अजीबो गरीब गल दिखाई देती है कि देश के पुराने वसनीक जड़े सन उन्होंने खास खास मौकों से गुरुओं का साथ नहीं दिता, खास खास मौके द्रोह किया, छल किया, कपट किया। और मैं ये भी हैरान हो जाना कई दफा देख के कि गुरु नानक का पहला सिख है राय बुलार मुस्लिम है, सिखी राय बुलार तो आरंभ हुई। इतनी गल करा गुरु नानक ने सच का नारा लाया है, कोई अजे कह रहा सुराई है, माता पिता भी कह रहे हैं नखट्टू है, और आले दुआले के पड़ोसी गवांडी शरीक भी

इस्लाम दियां वैधानिक ग्रंथ ने सिद्धांत तक पहुंचना किवें है विधान है। सिद्धांत एक मार्ग एक रस्ता बन गया है, पर रस्ते दे उते चलन दे रूल आखिर ट्रैफिक रूल भी तो होंगे ना। रस्ता गुरु ग्रंथ साहब एक रस्ता है, कुरान एक रस्ता है, वेद एक रस्ता है, गीता एक रस्ता है, पर आखिर रस्ते दे उते चलन दे नियम भी तो होंगे ना, ट्रैफिक रूल भी तो होंगे ना। रस्ता कोई होर बना देने, सड़क कोई होर बना देने, ठेकेदार बना देने, PWD का महकमा बना है, तो ट्रैफिक रूल खेमा करने ट्रैफिक का महकमा बना है, यातायात का महकमा बना है, और दूजे महकमे का काम वो ट्रैफिक रूल बना है। सड़क बना लेना ही सिर्फ बहुत वड्डी गल नहीं, सड़क के उत्ते चलण के रूल भी बनाने पैणगे, नियम भी बनाने पैणगे। अमेरिका दे या अमेरिका का जिथे जिथे जो है ट्रैफिक रूल का प्रभाव है उत्थे लोकी सज्जे पासे चलते हैं, बाकी देशों लोकी खब्बे पासे चलते हैं, समुचे अरब और यूरोप के कई देशों दे अमेरिका दे कनेडा दे लोकी सज्जे पासे चलते हैं, कारा मोटर सज्जे पासे चलदियां, इंग्लैंड दे एशिया के बहुत सारे देशों दे भारत दे खब्बे पासे चलते हैं, रूल है। तो हुण कोई आखे मैं ट्रैफिक रूल नहीं मनता, मेरी मर्जी मैं सज्जे चला मैं खब्बे चला, बस का ड्राइवर आखे मैं ट्रैफिक नियम की पालना नहीं करनी, मैं तो इन्नी पालना करनी चलना सड़क से है, उजाड़ च नहीं चलांगा, कच्चे च नहीं चलांगा, जिथे सड़क नहीं उथे नहीं चलांगा, चलांगा मैं सड़क से, पर मैं सड़क के नियम की पालना नहीं करनी, मैं ट्रैफिक रूल की पालना नहीं करनी। तो खिमा करनी ड्राइवर मुसाफरां नूं मंजिले मकसूद ते पहुंचाएगा, इह दा अपना भी भोग पै जाएगा तो मुसाफरां दा भी रस्ते च पै जाना है, ट्रैफिक नियम की पालना करनी पैंदी है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एक मार्ग ने, इस मार्ग दे उत्ते असीं किस तरह चलना है, रहतनामे साडा असूल ने, ट्रैफिक जो है रूल ने उहदे मुताबिक असीं चलना है इस मार्ग ते। इसे तरीके नाल हदीसां विधानक ग्रंथ ने, वेद सिद्धांतिक ग्रंथ ने हिंदू धर्म दे, पर मनुस्मृति विधानक ग्रंथ है, विधान है उहदे च, रूल ने। ते उहने बुलंद बांग के रहतनामियां दी की लोड़ है, रहतनामियां दी की लोड़ है। ते मैं आख्या हुण किधरे मुलाकात नहीं हो तो उन्हूं कह दिया तू हुण सारे देश च रोला पा, ट्रैफिक रूल की लोड़ है, सिर्फ सड़कां बनानियां चाहीदियां, ट्रैफिक रूल की लोड़ है, नहीं सड़क भी बनानी पैंदी है, ट्रैफिक रूल भी बनाने पैंदे, मार्ग भी बनाना पैंदा, मार्ग दे चलण दे नियम भी बनाने पैंदे ने। इस वास्ते हर जो है संप्रदा दे अपने सिद्धांतिक ग्रंथ ने, अपने विधानक ग्रंथ ने, उहदे रूल ने, उहदे कुछ असूल ने, उसके मुताबिक जो है चलना हुंदा है, और उस मुताबिक उसकी जो है पालना करनी हुंदी है। तो मैं अर्ज करा कुछ बार दे राजनीतिक ढांचे इस तरह बदलते रहे कि बंदे नूं आर्थिक समाजिक तौर पर संतुष्टि होवे, सुकून मिले, ते इहदे विच कोई बाधा ना खड़ी होवे, राजनीतिक लोगों ने नियम बनाए, ते वख वख इह राजनीतिक दुनिया विच पलटा आउंदा रहा। इस तरह जिवें वैदिक दुनिया विच पलटा आया, पहले आयुर्वेदिक, फिर यूनानी इलाज, फिर एलोपैथी, फिर होम्योपैथी, फिर नेचरपैथी, यह वक्त वक्त सिलसिला चलिया। इस तरह किसी वक्त शक्ति हुकूमत किंगडम, फिर सोशलिज्म का नारा लगया, कम्युनिज्म आया, फिर यह प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, यह वक्त वक्त तजर्बे किए गए। लेकिन खिमा करने आयुर्वेदिक के होंदया भी कुछ रोग ऐसे सन जिन्हां रोगां दे च लोकी ग्रसे रहिंदे सन ते रोग दूर ना हो सकिया। होम्योपैथी, नेचरपैथी, एलोपैथी, यूनानी तिब दे होंदे आया भी रोग मनुख दी दुनिया दे च रहे पूर्ण तौर ते दूर ना होए। हुण ते मैं देखदा जितनी देर दे च कोई नवी दवाई बाजार दे च आउंदी है उतनी देर दे च कोई नवा रोग भी आ जांदा है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पैण, बंदियां दे शरीर बीमारियां नाल भरे पैण। हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इकबाल कहिंदा है सियासत नालों धर्म नूं अड कर दो ते सियासत की रह जाती है, चंगेज खान दा अखाड़ा, हलाकू दी महफिल, हिटलर दा दीवान, बस यही कुछ रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता। अगर दीन नूं कढ दो, अगर धर्म नूं कढ दो सियासत दे चों, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे जी। साडे देश दे कुछ राजे भी पूजे गए, राजियां नूं भगवान आख्या गया, केड़े राजे

मानस बपड़ा क्या सलाही क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर छाया सब किछ तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा थानु दिया सुखदाता निखुट ना कभी जाए आनंद भया सुख सहज समान सतगुर मेल मिलाई मानु नाम जाप नाम आराध आन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी

प्रथम सनेमर गुरुदेव जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा एकाग्रता प्रदान करने आज दा सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नु सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत दी समस्या है। मनुख दा कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख दा कुछ लोभ दा जगत है। ये जीवन दे ढंग दो ही ने, लोड़ां दे च जीवना, लोभ दे च जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां की पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ की पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां, लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होता। लोभ दा स्वभाव है कि पूरा होता ही नहीं, होता ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहता है, अधूरा ही रहता है। जगत दे च पूरन शांतमई जीवन उही जीवदे ने जो लोड़ां दे च जीवे, लोभ दे च नहीं। मैं फिर दोहरावां, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होंदा। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना, तीन साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना मंगता, तीजा साधन खोना लुटना। लोड़ां नूं पूरे करन दे ए तीन साधन है। किरत करके लोड़ां दी पूर्ति करनी, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी, खो के लोड़ां दी पूर्ति करनी, और कोई साधन नहीं। जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने किरती, जो मंग के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने मंगता, जाचक भिखारी, और जो खो के लुट के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने चोर, लुटेरे, डकैत। संसार दे च ए तिन्ने मौजूद ने। ए ठीक है, वड्डा तबका किरतियां दा है, पर मंगतियां दा तबका भी घट नहीं है, ते लुटेरियां दा तबका भी घट नहीं है। लोड़ां दी पूर्ति करनी है खोक है, लोड़ां दी पूर्ति करनी है मंग के, लोड़ां दी पूर्ति करनी है किरत करके, मेहनत करके। ऐसे भी दुनिया विच अवतारां दे राहीं व्यापक नुक्ते लोड़ां दी पूर्ति लई पेश होए, उन्होंने दरम्याना रस्ता चुनिया
मेहनत नहीं करनी, खोना भी नहीं, भिक्षु बना देते, मंगना है, भिक्षा मंगनी, मंगना है। मंग के लोड़ा की पूर्ति करनी है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, वख वख अवतारा ने जिहड़ी उम्मत पैदा की है उन्होंने बकायदा नाम दिते ने। जैसे अहले इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने अपनी उम्मत नो मुसलमान कहा, महात्मा बुद्ध ने अपनी उम्मत जो पैदा की थी उन्हों भिक्षु कहा, गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल जो उम्मत दा जन्म होया उन्हों सिख आख्या गया। सिख ने, भिक्षु ने, मुसलमान ने, सनातन मत हिंदू धर्म दी शाखा एक नहीं है। ये ऐसा दरिया है जो कई धाराओं दे वगदा है। जैसे मैं देखे अमरकंटक दे बिलासपुर मध्य भारत हुण ते फैर प्रांत होर हो गया छत्तीसगढ़, उत्थे तीर्थ है अमरकंटक, धन गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहासक स्थान भी है। नर्मदा अमरकंटक तो निकलती है, ते जद निकलती है उत्थे इस दियां 70 धारावां ने, 70 टुकड़े ने, छोटे छोटे अगों जाके इकट्ठे हो जाते, दरिया की शकल अगे चल के बनती है, छोटियां छोटियां धारा। हिंदू धर्म की सनातन मत की धारा एक नहीं है, ये बहुत सारिया धारावां विच बगदा है और अगे जाके इकट्ठा भी नहीं आता। सन्यासी ने, बैरागी ने, ब्रह्मचारी ने, इना देच और सन्यासियां दे कई कई रूप, बैरागियां दे कई कई रूप, ब्रह्मचारियां दियां कई कई शाखावां, फिर जितने इष्ट ने उतनियां धारावां ने। किसे दा इष्ट शिव, किसे दा श्री राम, किसे दे श्री कृष्ण, ये धारा मेल भी नहीं खांदी। एक आम मनुख दी ते गल छड़ो, देश ते जगत प्रसिद्ध भगत, लेखक, विद्वान महात्मा तुलसी जैसे मथुरा विच आए रामायण दी कथा करन, तो हुण कुदरती गल है मथुरा नगरी श्री कृष्ण दी है, जिवें अयोध्या श्री राम दी, जिवें अमृतसर नूं असी रामदासपुरी कहिंदे आ, रामदासपुर नाम भी पहले यही सी। गुरु रामदास जी दी नगरी है, अयोध्या राम दी नगरी है, बनारस शिवां दी नगरी है, मथुरा कृष्ण दी नगरी है। मथुरा विच आए महात्मा तुलसी तो ले गए श्रद्धालु इन्हां नूं कृष्ण जी दे मंदिर विच, द्वारकाधीश मंदिर विच। सारिया ने डंडौत कीती, तुलसी ने नहीं कीती, तुलसी ने नहीं कीती। पूछिया गया, आप भगत हो, सिर्फ भगत ही नहीं, भक्ति का संदेश देंदे हो, उपदेश देंदे हो, कथावाचक हो, सिर्फ कथावाचक ही नहीं, तुसी बहुत वड्डे विद्वान हो, लिखारी हो, आपने डंडौत नहीं की थी, मत्था नहीं टेकया, तो हुण जो कुछ तुलसी कहंदे ने उन्हां दा ही बोल मैं थोड़े सामने रखा। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, बड़ी सुंदर छवि है, मूर्ति बड़ी सुंदर है, बड़ा सोहना प्रभाव पै रहा है,
ਹੋਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਛਬ ਬਣੀ ਭਲੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨਾਥ, ਪਰ ਤੁਲਸੀ ਮਸਤਕ ਤੌਨੇ ਵੇ ਜੋ ਧਨ ਸ਼ਬਾਨ ਹੋਏ ਹਾਥ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨਸ਼ਦਾਨ ਹੋ, ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਧਨਸ਼ਧਾਰੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੁਰਲੀ ਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਮੁਰਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਉਮਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਛੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਛੇ ਨੇ। ਨਿਆਇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੌਤਮ, ਸਾਂਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਲ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਮਨੀ, ਯੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੜਾਦ, ਇਹ ਛੇ ਗੁਰੂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਅਨੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ? ਦਰਅਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੌਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਪਤੀਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਡੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਟੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ, ਕਪਲ,
कणा, पतंजलि, जैमिनी और ऋषि वेद व्यास इन्हां छे गुरुआं दा गुरु ओ एक है। गुर एको। इत्थों दावे नाल गुरु नानक देव जी कहिंदे ने ज्ञान सारा परमात्मा तो आंदा। तो फिर आदि गुरु भी परमात्मा ही है। परम पर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुरु मिलिया सोई जीव। आज तक किसे एक भी ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं आख्या ये ज्ञान मैं अपने आप प्राप्त किया है। सब कहते प्रभु तो मिले परमात्मा तो मिले। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझे हम। हुण गुरु नानक देव जी महाराज इसे ही वाक दे च मंग करदे ने बाबा जय घर कीरत करते कीरत होए। जिस घर दे च कीर्ति चल रही है, जिस घर दे च सत्संग चल रहा है, हे करते तेरी गल चल रही है, तेरियां बातां चल रही हैं, तेरा ज्ञान चल रहा है, तेरी ध्यान साधना चल रही है, बाबा जय घर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तो है। उस घर दे च मैनू रख, मैनू ओ थां बख्श जिथे तेरी कीर्ति हो रही है, जिथे तेरा जस हो रहा है, जिथे तेरी महिमा हो रही है, ताकि मैं सुना सो स्थान बताओ मीता जाके हर हर कीर्तन नेता। तो मैं अर्ज कर रहा से इको ही उम्मत नो जन्म देता है गुरु नानक ने। सिख सिख केवल सिख है, इको ही उम्मत नो जन्म देता है। मुहम्मद साहब ने मुसलमान केवल मुसलमान, इको ही उम्मत नो जन्म देता है। महात्मा बुद्ध ने भिक्षु भिक्षु एक तरह की उम्मत सनातन मत दे च नहीं है। कोई आर्या समाजी ने, कोई देव समाजी ने, कोई जो है सनातनी ने, फिर इन्हां दी शाख साधुआं दी अलग अलग शाखावां ने। अगर असल देखना होवे ते जद इन्हां दी शाइयां निकलदियां ने कुंभ दे च, उदों पता चलदा है कितने फिरके ने। अलग अलग टोल लड़ भी पैंदे, झगड़ा भी हो जांदा। इस कुंभ तो पहले कुंभ दे 42 साधु मारे गए सन। नांगे साधुआं दी ते निरंजनी अखाड़े दी जंग हो गई सी, लड़ पए सी। एक ने कहा पहले असी स्नान करना है, दूजे ने कहा पहले असी करना है। कुंभ लड़ पए। हैरानगी दी गल, कुंभ दे दिन पाप धोण वास्ते आए सन, उत्थे ही पाप कर बैठे। 42 बंदे कतल हो गए। जन्मा जन्मांतरां दे पाप धोण ना आए सन, सब तो वड्डे पाप उत्थे ही कीते, सब तो वड्डे गुनाह उत्थे ही कीते। एक शाखा नहीं है, अनंत धारावां ने। ये ओ दरिया है जो अनंत धारावां दे च पहाड़ तो निकलदा है, फिर मिलदियां भी नहीं आपस, अलग अलग ही चलदियां। तो मैं अर्ज कर रहा सी मनुख दिया लोड़ां ने और लोड़ां दे नाल संबंध मनुख तोड़ नहीं सकता। लख यतन करे मैनू नहीं चाहिदा पानी, पर शरीर मंगेगा, लोड़ है। लख मैं उच्ची आवाज नाल आखां मैनू नहीं चाहिदा भोजन, पर शरीर नू भुख लगेगी मंगेगा। शरीर नू गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, भुख लगती है, प्यास लगती है। कुछ ते वड़ियां वड़ियां शरीर दियां लोड़ां ने, कुछ छोटियां छोटियां होर बथेरियां। इस वास्ते मैं अर्ज करदा हुंना लोड़ां दा कोई त्यागी नहीं है, कोई त्यागी नहीं। गल मैनू भुलदी नहीं, 15 दिन मैं कस्तूरबा ग्राम इंदौर देच
संत विनोबा भावे दे होंदिया कथा कीती सी। सवेरे मैं इमली साहब गुरुद्वारे च करदा सी, शामी कस्तूरबा ग्राम जो संत विनोबा भावे जी का आश्रम सी, मैनू कहण लगे सानू भी गुरबाणी सुनाओ। मैं जरूर सुनावा। मैनू उन्होंने 35-40 किताबां भी अपनिया लिखिया हुई भेटा च दित्तियां। सुभाविक बजुर्ग सन, धन माया मेरे अगों आई तो चूंकि त्यागी साधुआं दा आश्रम सी, परोपकारियां दा सेवा भाव, जमीन कट्ठी करके ते गरीबां दे च वंडनी भूदान, तो ओ माया मैं विनोबा भावे दे चौले च पा दिते, एकदम सुट दिती मिट्टी। मैं कह इस तरह क्यों इन्ने नफर मिट्टी आई है? मैं कह मिट्टी नू हथ लांदे हो कि नहीं? मिट्टी नाल ते तुहानू हथ भी धोने पैंदे, मैं देखदा मिट्टी नू हथ लांदे हो कि नहीं? ते जे धन भी मिट्टी है तो की हर्ज है? की हर्ज है? मैनू कहण लगे मनुखता ने मिट्टी नू अजे इतनी अहमियत नहीं दिती, मिट्टी तो बने हुए कागज नू, इस करंसी नू बड़ी अहमियत दे दिती है। इहदे च अहमियत छुपी हुई है बड़ी, इह किधरे लोभ ना पैदा कर देवे, इस वास्ते सुणदे। मैनू अजे तक याद है पर लोड़ां दा मनुख त्याग नहीं कर सकता। लोड़ां हैं, मैं लख कह दिया नहीं चाहिदा मैनू पानी, मेरी प्यास आवाज मारेगी पानी चाहिदा चाहिदा। मैं लख ठोकर मार देवा भोजन दे थाल नो, मेरी भुख उच्ची आवाज नाल मंगेगी भोजन चाहिदा भोजन चाहिदा। और इस तरीके दियां होर सैकड़े लोड़ां। फिर लोड़ां नू पूरा करन दे तीन साधन ने, पहला किरत करनी, मेहनत करनी। मेहनत करके अपनी लोड़ां दी पूर्ति करनी, ते जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदा उनू कहिंदे ने किरते। दूसरा मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी। क्योंकि अज दा वाक इस तरह दा आया तो मैं अर्ज करा, अछूता जिहा वाक है, किस हो जाची किस साला, जाचण मंगण तो गल चलती। अज दा हुक्मनामा इस तरह दा, इसने ही ख्याल दिते ने मैनू, अज दा वाक ही ऐसा है। लोड़ां दी पूर्ति करन दा पहला ढंग है किरत करनी, मेहनत करनी। उन्हां नू कहा जांदा है किरती। दूजा ढंग बड़ा व्यापक पद्धर ते सारी दुनिया दे चे, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करने। तो इस नाल मंगतियां दा जन्म होया, भिखारियां दा जन्म होया, और धार्मिक जगत दे च भी मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी है। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी उम्मत नू कहा भिक्षु भिक्षु, भिक्षा मंग के गुजारा करना। इस वास्ते मैं कई दफा कहा कि महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर दा धर्म ते इस तरह दे होर त्यागियां दा धर्म व्यक्तिगत धर्म है, प्रभु नाल जुड़न दा वसीला है। ये व्यक्तिगत धर्म है, समूहक नहीं, सारियां दा नहीं। कारण अगर सारे भिक्षु बन जान, चलो मन लेंदे हैं सारे महात्मा बुद्ध की गल मन लैन ते सारे भिक्षु बन जान, फिर कौन देगा? देने वाला कौन होगा? किसने देना? सारे ते मंगते हैं, सारे ते मंगण वाले, फिर कौन देगा? तो सारियां दा धर्म नहीं है। अगर सारे ग्रस्त दे त्यागी बन जान तो 300 साल तो बाद बंदा ते जमीन ते एक भी नहीं लभेगा, गल खत्म हो जाएगा।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਮੂਹਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਮੂਹਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੀਣਗੇ। ਗਊਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤਿਆਗੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ

0: पयो अनुग्रहो
1: जाकाओ प्रभु को इस हृदय नाम
0: वसाया
1: सार संगत का पाछा पर्याओ जानो
0: नानक हर रस पाया
1: पयो अनुग्रहो
0: जाकाओ प्रभु को इस हृदय नाम
1: वसाया
0: साध संगत का
1: पाछा पर्याओ
0: जान नानक हर रस पाया
1: वाहिगुरु जी का खालसा
0: वाहिगुरु जी की फतेह।
2: गुरु रूप साध सिंह जीओ सनेमर फतेह कबूल करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की पावन पवित्र वाक राग टोडी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का मूल जिहड़ा इस विशा प्रकरण चल रहा है जीवन के लक्ष्य को समझे बिना जीवन व्यतीत करना व्यर्थ है। फिजूल है। जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यों जी रहे हैं? जीवन क्यों है? बगौर मुताला करेंगे किसी ने जीवन का लक्ष्य खाना पीना ही रखे है। एक साधन से लक्ष्य नहीं सी। किसी के जीवन का लक्ष्य परिवार है, धन संपदा है। इस तो अगे अज तक मनुख दिया निगाह नहीं गई, इतें ही रुकिया जाए, इतें ही रुकिया। तो साहब कहने ये लक्ष्य नहीं है, जीवन का यह लक्ष्य नहीं है, जीवन का यह निशाना नहीं है, जीवन का यह घर नहीं है। जिहड़े जिहड़े लक्ष्य बनाए ने यह तो साधन ने, साधन लक्ष्य समझ ले तो कुदरती गल है जब साधन ही लक्ष्य हो गया फिर लक्ष्य से असल दे बल जाएगा, बल जाएगा। तो लक्ष्य नहीं आया है, लक्ष्य भूलिया हुआ। इसे वास्ते अवतारी पुरुष कहते हैं याद करो किसनो लक्ष्य नो। लक्ष्य की है परमात्मा, लक्ष्य की है ईश्वर, यह भूलिया हुआ। करीबन करीबन सारी कायनात नो भूलिया हुआ। की होया कोई करोड़ों विच एक अद मनुख नू लक्ष्य का पता, लक्ष्य की समझ है, बाकियां नू नहीं है। जिस जिसनू भी लक्ष्य का बोध नहीं है, महाराज कहने ने उदा संसार ते आना व्यर्थ है। फिजूल फिजूल जी रहे है, व्यर्थ जी रहे है। इस तरह इस विचारधारा नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आरंभ करते ने। मैं अर्ज करा सार्थक है उस मनुख का जीवना जिन्हों लक्ष्य की समझ है तो जीवन लक्ष्य की तरफ जा रहे है। लक्ष्य की कोई समझ ही नहीं है तो जब समझ ही नहीं है तो फिर जीवन उस पासे नहीं जा सकता। चंगे चंगे जिन्हों असी सत्संगी कहने, प्रेमी कहने, नितनेमी कहने, इन्हों के भी जीवन का लक्ष्य परमात्मा नहीं है, नहीं। इन्हों ने भी साधन ही लक्ष्य समझे हुए है कि किसी हद तक जो लक्ष्य परमात्मा है इन्हों साधन की तरह वरतते हैं कि हे प्रभु तो ऐ करें तो ऐ करें तो ऐ करें ये नहीं कि हे प्रभु तू मिले उसका मिल जाना सब कुछ का मिल जाना है उसकी प्राप्ति सब कुछ की प्राप्ति है ठीक कहता एक सूफी सब कुछ खुदा से मांग लिया खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद कहता है जिस दिन का मैं रब नो मंगे उन होर कुछ मंगना चंगा ही नहीं लगता रब को लिखी मंगे मैं रब नो ही मंगे और कुछ नहीं मंगे परमात्मा कोलों की मंगया है परमात्मा कोलों परमात्मा ने ही मंगया है बड़ा सियाणा होवेगा सूझवान होवेगा यही सियाणा है बाकी सब मूल ने जो परमात्मा कोलों होर होर ते मंग लैंदे ने पर परमात्मा नु नहीं मंगदे ते जिहड़े होर होर मंगदे ने सब कहिंदे ने मम्मा मांगन हार इयाणा ये सब इयाणे ने बच्चे ने नादान ने ना समझना मम्मा मांगन हार इयाणा इयाणे ने खिलौने ही मंगने ने कई दफा खिलौणियां दी ममता करके खिलौणियां दी पकड़ करके मां नूं भी भुल जांदा प्यो नूं भी भुल जांदा जरा वड्डा हो गया खिडौने वड्डे हो गए ने हुण परिवार करके निरंकार नूं ही भुल गए हुण पदार्थां करके परमात्मा नूं ही भुल गए परमात्मा कोल अगर कुछ मंगण वास्ते भी जांदा किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कोई साधना भी करदा जप तप भी करदा परमात्मा कोल मंगदा परमात्मा नूं छोड़ के सब कुछ मंगदा सब कुछ मंगदा एक परमात्मा नूं छोड़ के जिहड़ा जिहड़ा मंगदा है और जो कुछ मनुख मंगदा है वह ते गुरबाणी कहिंदी है बिना मंगया ही दे रहा है अण मंगया दान देवना कहो नानक सच संभाल दियो साड़ी मेहनत कोई भी संसारी अजाई नहीं जाती और जो साड़ी प्रलभ होंगी वो तो मिलता जा रहा बिना मंगया ही मिलता जा रहा इस वास्ते साहब कहने मांगन मांग मांग मांगन मांग सो एक है मांग उस एक नो ही मांग छड़ बाकी बस उस एक नो छड़ के ही सब कुछ मंगते हैं चंगे चंगे सत्संगी नितनेमी प्रेम महाराज कहने मांगन मांग सो एक है मांग नानक जाते परे परा सारे धंधिया तो सारे दुखां तो मुक्त हो जाए उस एक नो मांग सब कुछ खुदा से मांग लिया खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद कहिंदा जिस दिन का मैं ये मंगया हुण होर कुछ भी मंगना चंगा नहीं लगता पर परमात्मा लक्ष्य होवे तां ऐसा हुंदा है सत्संग कीता होया किसदा सफल जिन्हें जीवन का लक्ष्य परमात्मा नो समझ लिया सत्संग कीता सफल होया ते जन्म किसदा सफल होया जेदा जीवन लक्ष्य तक पहुंच गया ये दो तरह की सफलता है पहली सफलता कीर्तन सुन की कथा सुन की जप तप करन की दान पुन करन की सत्संग दे जान की सफलता किस दिन सफलता जिस दिन जीवन का लक्ष्य केवल गुरु नूं रख दिता परमात्मा तो ही मिल ये सत्संग का फल मिल गया समझ मिल गई पता चल गया पर संसार से आया ये मिलया होया जन्म यह कदों सफल होवेगा जब जीवन लक्ष्य तक पहुंच गया एक समझना है एक प्राप्त करना है ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਨਾ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੀਏ। ਲੜੀਵਾਰ ਆਪ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ
0: ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਵਿਰਥਾ ਆਇਆ।
2: ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਵਿਅਰਥ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਵਿਅਰਥ। ਜੇ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ।
0: ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਜ ਸ਼ਿਗਾਰ ਬਹੁ ਪੜਤਾ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਡਾਇਆ।
2: ਜਿਤਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਛ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ, ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਡੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮਾਗਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਤਵੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ 20-25 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ। ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 20-25 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਕਵਾਨ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੰਡਿਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੁਮਲਾਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਡੰਗ ਦਾ ਸੰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਬੇਗੋਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਧਰੇ ਜਰਮਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਦਸੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਗੋਵਾਲ ਗਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਬਕਸੇ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਕਸੇ 'ਚ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਇਕੱਠ

आखिया लैणिया तू चिकड़ दे चों लोटा नहीं कढ़िया सारी मनुखता नू कढ़िया क्योंकि जो चिकण लगन तो डरदा है वो किसे नू चिकड़ दे चों नहीं कढ़ सकेगा। परोपकार करना बहुत कठिन है। किसे नू बलदी होई अग दे चों ओही कढ़ सकदा है जो सेक लगन तो डरे ना। और गंदगी दे चों ओही किसे नू कढ़ सकदा है जो छिट्टे पैण तो डरे ना। इस तरह गाहे बगाहे गुरु नानक देव जी महाराज इम्तिहान लेंदे रहे ते भाई लेना इस इम्तिहान ते हर वेले ही पूरे उतरदे रहे। ए हुक्म मनन दी मूर्ति सन हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। इस सिद्धांत दे मुताबिक भाई लेना जी जी रहे सन। एक होर प्रीख्या दी घड़ी आई। इतनी वड्डी दात इतनी वड्डी सौगात आपनूं इह किवें प्राप्त होई पिछोकड़ बहुत सुंदर इतिहास है। जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने धारणक रूप धारण कीता डरावना ऐसा लिबास पहन लिया पिछे कुत्ते ला लै हथ दे च बहुत वड्डा सोटा रख लिया झोले दे च पत्थर रख लै। मखलूक जिहड़ी पिछे चल रही सी महाराज ने पत्थर मारने शुरू कीते। अद्धी दुनिया वापस हो गई बे गुरु नानक देव जी भूतने हो गए ने बेताले हो गए ने इन्हां नूं कुछ हो गया। महाराज पिछे मुड़ के देखदे ने अजे भी कुछ नाल चल रहे ने। तां आप दे हथ जो सोटा सी ਉਹ ਵਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਭਈ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਚੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ सोने दियां चांदी दियां ओ सुटनियां शुरू कीतियां। भाई लेने तो बिना सब ने चुक लिया और वापस हो गए। पत्थर खा के सोटा खा के जो नाल चल रहे सन सोने दी मोर नहीं सहार सके। देखण दिच आया है दुख करके ते कई दफा मनुख परमात्मा दा नाम लई जांदा हुंदा है किसे संत दे पिछे चलदा है। पर जद सुखां दी मार पै जाए ऐसा आलसी हो जांदा है ऐसा दलिदरी हो जांदा है रुक जांदा है। पर सोने नूं भी लिताड़ के सुख नूं भी लिताड़ के लैणा गुरु नानक दे पिछे चलदे रहे। अज जगत गुरु बाबे ने पूछ ही लिया लैणिया सारे चले गए तू नहीं गया। हाथ जोड़ के लैणा जी कहण लगे गुरदेव पिता सब दे अपने अपने घर सन अपने घरां नूं चले गए। मैं ते निथावा थोड़े कदम ही मेरा घर ने थोड़ी थां ही मेरी थां है होर ते मेरी कोई अपनी थां नहीं होर ते मेरा कोई अपना घर नहीं। ए भी गुरु नानक दी पाई हुई कसवटी सी। इस ते भी लैणा जी पूरे उतरे मुकम्मल उतरे। भाई लैणा दी मनोबिरती ऐसी दिन दिन रंग चढ़दा गया वद्दा गया। गुरु नानक दे अंग दे नाल छूंदिया छूंदिया वाकई गुरु नानक दे अंग आप दे अंदर प्रदर्शित होने लग पे आप दे अंदर प्रगट होने लग पे। अज करतारपुर दे च बड़ी संगत आई बहुत संगत आई सतगुरां दे दर्शनां लई और पातशाह दे अमृतमई बचन सुनन लई। भरी संगत दे च गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री चंद नूं आवाज मारी ते आखिया बेटा संगत बहुत आई। हां मां संगत ते बहुत आई गुरुदेव पिता।

ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਛਕਾਈਏ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਬਣਵਾਈਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੇਗੀ ਥੱਲੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਓ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਜੰਡ ਤੇ ਐਸਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੂ ਬਹੂ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਵੱਡੇ ਬਿਰਾਤਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਟਪਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚ ਅਖੀਰ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਰਸ ਸੀ, ਖੇੜਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਭੱਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਕਮ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਚੜ ਇਸ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਟਪਕਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਕਦਮ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲੈਣਾ ਜੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਟਪਕੇ, ਆਪ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਟਪਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਤ ਦੇਖਦੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਲੈਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਨ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀਏ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਪਿਆ, ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ ਜਲੀ, ਚਾਨਣਾ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਭੱਟ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ। ਮੇਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਆਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਕਨੌਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਹੁਮਾਇਓਂ ਅਸਫਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
रस्ते च कोई फकीर मिले पीर मिले ओदी दुआ ले लेंदा सी, ओदे कोल आशीर्वाद लेण दी कोशिश करदा सी कि मैं ए हारी होई बाजी फिर जित जावा। किसी तरीके नाल ए तखत जो मेरे कोल शेर शाह सूरी ने खो लिया फिर प्राप्त होवे। ता रस्ते दिच किसे ने कह दिता गुरु नानक दी गद्दी ते विराजमान ने धन गुरु अंगद देव जी महाराज, तुसी उना तो असीस लो, उना तो आशीर्वाद लो। आप ब्यास नू पार करके जद पहुंचे खंडूर साहब, जगमगांदी जोत दे दर्शन कीते पर सतगुर समाधि दे सन। उच्चा उठ के तक के हुमायूं दी तरफ नहीं देखिया। हुमायूं नू हैरानगी हुई क्योंकि पीर फकीर सन्मान करदे रहे सन, आदर करदे रहे सन, बादशाह रह चुके असी तो बादशाह दा अपना हंकार। मयान चो तलवार कढ ली उसने गुस्से च आके, सतगुरु दे नेत्र खुले, कहन लगे जिथे तलवार चलनी चाहीदी सी तू उथे मैदान म्यान दिच रख के भज पे है, और जिथे म्यान दिच रखनी चाहीदी है उथे तू बार कढ रहे है। बड़ा कायर है, बड़ा ना समझ है। शर्मसार होया हुमायूं, कदमा ते झुकया, आख्या गुरुदेव पिता माफी, भूल हो गई, गलती हो गई। गुरु अंगद देव जी महाराज ने उसनू उपदेश दिता, हुमायूं फकीरां ते तलवार नहीं चलाई दी, फकीरां दी तलवार कोलों अपना नास कराई दे। बचन बड़े अगम्मी, फकीर दी जद तलवार चलदी है दूजे दे हंकार नू कट के रख देंदी है ते दूजे नू ऐन निर्माणता दी मूर्ति बना देंदी है। वाकई हाथ जुड़ गए सन हुमायूं दे और माफी मंगन लग पिया सी, भूल मंगन लग पिया सी, बापा मेरे कोल भूल हो गई, गलती हो गई। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने गुरुमुखी लिपि दे प्रसार लई गुरबाणी जगत पढ़ सके, पढ़ा सके, समझ सके, समझा सके, इना अखरां दे पढ़न पढ़ाण दी तरफ भी काफी रुचि दित्ती। आपने स्वयं बच्चियां नू पढ़ाना आरंभ कीता ताकि ए परंपरा लंबे व्यापक रूप दे जो है चल सके और जगत उस बाणी नू पढ़ सके जिस दे च रब्बी अलहाम नाजल होया है, जिस दे च रब्बी ज्ञान नाजल होया है। आपने बड़े वड्डे पद्धर ते लंगर दी परंपरा चलाई। इस दे च आप दी सुपत्नी धर्म पत्नी जगत माता खीवी जी दा बहुत वड्डा हथ, और आप दे लंगर दे च जो कुछ बनदा सी सत्य ब्रह्मंडे दी वार दे च बकायदा उसका जो है जिक्र है। लंगत दौलत वंडिए रस अमृत खीर घयाली, घ्यो दे नाल ओत परोत खीर दिन रात लंगर दे चल दिए, पकवान सुंदर बनदे ने, आए हुए यात्रों नू छकाए जांदे ने, पहले भोजन नाल उना नू तृप्त कीता जांदा है ते जद उना दा तन तृप्त हो जांदा है तो उना दी मन दी तृप्ति लई फिर भजन दा इंतजाम, फिर नाम बाणी दा अभ्यास साहिब ए करवांदे सन ताके तन दी तृप्ति तो बाद इना नू मन दा सुकून भी मिले, मन दी शांति भी मिले। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी चलाई हुई परंपरा लंगर दी उस नू आपने विस्तृत कीता, विस्तार सहित फैलाया जगाया। फिर इसे तरीके दे नाल परोपकार करदे हुए गुरबाणी दा उपदेश देंदे हुए सन 1606 बिक्रमी च खंडूर साहब विच आप ज्योति जोत समा गए, और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा परम रूप स्थापन कर गए धन गुरु अमरदास जी महाराज, जो आप दे
रिश्ते देच बकायदा कुड़म सन। गुरु अंगद देव जी महाराज दे बेशतर सलोक ने, बहुत सारे शब्द ने जो बकायदा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे जो है दर्ज ने, लेकिन सारे शब्दां देच, सारे सलोकां देच हुक्म मनन दी ताकीद है, हुक्म मनन दा उपदेश है, हुक्म दे मार्ग ते चलन दा ही संदेश है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो जो शिक्षा दीक्षा धन भाई लैणे ने लई अपने तौर ते पूरी शक्ति दे नाल वंडदे रहे। यादगारी अस्थान आप जी दा खंडूर साहिब विच मौजूद है, जिथे आपने जगत नूं पढ़ाना शुरू कीता ओ अस्थान भी आप जी दा पावन रूप दे जो है मौजूद है। भट्ट आप दी उपमा इस तरीके नाल करदे ने, दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप प्रनासन, शबद सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन, लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रित पालन, आत्म रत संग्रहण कहण अमृत कल ढालन, सतगुरु कल सतगुरु तिलत सत लागे सो पै तरे, गुर जगत फिरण सी अंगरो राज जोग लैणा करे। भट्ट कहिंदे ने इह लैणा जी इह गुरु अंगद देव जी इत्थे राज योग दी परंपरा चला रहे ने, इह अंदरों ब्रह्म नाल जुड़े होए ने, बाहरों जगत नाल जुड़े होए ने। मूल आप दा संदेश उपदेश परमात्मा दी खातर पदार्थ तो नहीं टुटना, और पदार्थां दी खातर परमात्मा तो नहीं टुटना, संसार दी खातर निरंकार तो नहीं टुटना, और निरंकार दी खातर संसार तो नहीं टुटना, क्योंकि संसार भी उसे दा रूप है, संसार प्रभु दा तन है, और खुद आप सुभाविक रूप विच इक जोत है। इसे तरीके नाल उसने साडी बणतर बनाई है, सानू तन दिता है, सानू मन दिता है। मन दे जद प्रभु दा नाम वस जाए तो मन जोगी बन जांदा है, और तन नू पदार्थ मिल जान तो तन राजा बन जांदा है। इंज धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने जगत नू जो संदेश ते उपदेश दिता ओ राज योग दा दिता। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज ने इसे परंपरा नू अगे तोरन लई फिर तीसरी जोत धन गुरु अमरदास जी महाराज दी परिक्रमा करके, और उसे परंपरा दे मुताबिक अपना मस्तक बिरद बाबा गुरु अमरदास जी महाराज दे कदमा ते रखे, हथ जोड़ के मथा टेकया, आप तन दे करके धरती विच समा गए, जोत करके गुरु अमरदास जी महाराज दे अंदर विराजमान होए। घन हर बूंद बसोरु मावल कुसम बसंत गलंत नयावे, राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंगे अंत को पावे, रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के

हिंदी दे प्रसिद्ध शायर कवि भूषण ने औरंगजेब बारे जो कुछ लिखे है वो ये है। हाथ तस्बीह लिए प्रात उठे बंदगी को आप ही कपट रूप कपट सो जप के, आगरे में जाए दारा चौक में चिनाए लियो छतर हूं छनायो मानो मरे बूढ़े बप के, कीनो है सगोत घात सो मैं ना ही कहूं फेरी फील पर तुरायो चार चुगल के गप के, भूषण भनत छर छंदी मती मंद महा सौ सौ चूहे खाए के बिलारी बैठी तप के। हुण तू तस्बीह लेके बैठा हुण तू पंज वक्त दी नमाज पढ़दा रोजे रखदा पर वेख ते सही तू पिता नू कैद कीता है, बिरावां नू कतल कीता है, बरजाइयां नू कैद कीता है, और अगाऊं चल के इसने अपने पुत्र बहादुर शाह नू भी कैद कीता, किधरे भरावां दी तरह प्यो दी तरह ए पुत्र भी वारस बनन दी कोशिश ना करे, राजनीति ते स्वार्थ ते खड़ी है ते धर्म पर स्वार्थ ते खड़ा है। धर्म दा ते मतलब है दूजियां दे हित लई सोचना, राजनीति दा मतलब है अपने हित लई सोचना, तो स्वार्थी होवेगा तो सतवादी ते सताधारी दा टकराव होया। इस टकराव दे वक्ती तौर ते हमेशा सतवादी हारदे आए ने। संसार दा इतिहास पढ़ के देखो सत दी मूर्ति राम बन बन दियां ठोकरां खा रहे ने, पर झूठी मंत्रा ते कह कई सिंघासन ते बैठी महलां विच बैठी। सच दी मूर्ति प्रहलाद जेल दी तंग तारीख कोठड़ी दे चै, पर झूठा हरनाकश सिंघासन ते बैठा। सच ते बैराग दी मूर्ति ध्रुव जंगलां दी ठोकरां खा रहा है साधना कर रहा है, पर झूठी मतरेई मां महलां विच बैठ के ऐश कर रही है, आराम कर रही है, सुख मान रही है। अगां चलिए देवकी ते वासुदेव जो प्रेमा भक्ति दी मूर्ति ने वो कंस दी कैद विच ने जेल दे अंदर ने, पर कंस सिंघासन ते बैठा। जेल दी तंग तारी कोठड़ी दे च ही सच दी मूर्ति श्री कृष्ण दा द्वापर दे अवतारी पुरुष दा जन्म होया है। हैरानगी दी गल जद मैं इस ढंग नाल पढ़दा कि जेल दे विच ही वक्त दे सताधारियां दी जेल दे च गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ज्योति जोत समाये उन्हां दा अंत होया है, ते जेल दे च ही श्री कृष्ण दा जन्म होया है, ते मैनूं कहना पैंदा सच दा जन्म हुंदा है ते जेल दे च हुंदा है, सच दा अंत हुंदा है तो जेल दे च हुंदा है। सत दी हार भी असल दे च जित है और झूठ दी जित भी असल दे च हार है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल कूड़ ने खुट्टे नानका ओढ़ के सच रही। आप दिल्ली दे चांदनी चौंक दे शहीद की होए समुचे देश नू चानना वंड गए। सूरबीरता दा बहादरी दा अणख दा गैरत दा सुती हुई कौम नू आपने जगाया। आप दी शहादत दे नाल ही सिखी दा जो स्वरूप बनया वो केशाधारी बनया, और संत सिपाही दी शकल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बकायदा बख्शिश कर दिती ताकि आइंदा लई ए सत ते सता इक्को ही थां ते रहे और सतवादी सताधारियां दे हत्थों बेजार ना हुंदा रहे, औखा ना हुंदा रहे। साहिबां दा धड़ चुक के लखी शावन जारा लियाया और उरने अपने पिंड दे च अपने मकान दे अंदर रख के मकान नूं ही अग ला दित्ती। इस ढंग नाल उसने अपना मकान गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दे धड़ तो निछावर कीता। उस थां ते पावन गुरुद्वारा बनया होया गुरुद्वारा रकाबगंज। शीश दा दाह संस्कार होया आनंदपुर साहिब दे च। उस थां दे ते भी गुरुद्वारा बनया होया जिस दा नां है गुरुद्वारा शीशगंज, ते जिथे आप दी शहादत होई उथे भी

सवा सौ बचा बसा टूरिस्ट बसा रोज पहुंच दिया ने, सैकड़े टैक्सियां रोज पहुंच दिया ने, की देखण खजुराहे दे मंदिर, खजुराहे दे मंदिर। कोई 300-400 एकड़ विच 18 मंदिर बने हुए, काम दे मंदिर, काम दे चित्र, काम दिया मूर्तियां, राम दे मंदिर नहीं ने, काम दे मंदिर। पर उन्होंने मंदिर आख्या जाता है। वाम मार्गियां को तर्क से अगर जीवन मंदिर है, हरि मंदिर है, इस मंदिर दे काम तो बिना और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसी बार काम दे मंदिर बनाए बनाए, देवदासियां दी प्रथा इत्थों चली। भैरो काल दा मंदिर उज्जैन दा, सारा दिन प्रसाद पता है किसदा मिलता है, शराब दा, सारा दिन चढ़दी की उथे शराब। जिवें दरबार साहब सीजगंज सारा दिन कड़ा प्रसाद चढ़दा, उथे शराब चढ़दी, शराब की बोतल लेके जाना पैदा। मैं कोई हजारां साल पुरानी गल नहीं कर रहा, अज की कर रहा, हूं भी यही कुछ। काली दा मंदिर कलकत्ते दा, कुमुखिया देवी दा मंदिर गुवाहाटी दा, मास दा प्रसाद मिलता है, मास सवेरे संडे बकरे कटे जांदे, खून दा तिलक लगता है, दरवाजे नूं मंदिर दा दरवाजा खुलदा है, मूर्तियां नूं तिलक लगदा है, आए हुए श्रद्धालुआं नूं भी खून दा ही तिलक लांदे। ये अजे कुछ थोड़े जिहा अस्थान मौजूद ने। किसे वक्त महात्मा गांधी ने कह दिता सी, खजुराहे दे मंदिर इन्हां नूं मिट्टी नाल दब दे, साड़ी अश्लीलता नूं प्रगट कर देना, साड़ी असभ्यता नूं प्रगट कर देना, साड़ी होंद ठीक नहीं पै प्रगट कर दे, दब दे। इस वास्ते के असी उत्थे जिन्ना टूरिस्ट जांदा है 80% फॉरनर है, यूरोप दे लोग ने, अमेरिका, कैनेडा, कुछ एशिया दे मुल्क फॉरनर पहुंचते हैं, बड़ी तादाद विच पहुंचते। उस तरह का मंदिर ही कोणारक विच है उड़ीसा, काम का मंदिर। उस तरह के कुछ मंदिर तमिलनाडु विच भी ने। यह महात्मा गांधी ने कहा दब दे, साड़ी असभ्यता प्रगट कर दे, साड़ी अश्लीलता प्रगट कर देने। पर तार्किक लोगों नूं इह कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा जे जीवन नूं तुसी मंदिर कहिंदे हो तो इस मंदिर विच इस तों बिना होर की है, होर की है। जबान रस मंगदी है, अखां रस मंगदियां ने, कन्न रस मंगदे ने, नासका रस मंगदी है, खलड़ी रस बन मंगदी है, ते प्रकृति ने ए रस बनाए हुए ने। क्यों बनाए ने? बनाए ने रस लैण वास्ते। जीवन मंदिर है, मंदिर विच यही कुछ है, इंद्रियां दा रस। असी यही प्रेरणा देंदे हां, जीवन दी महानता है, इत्थे बड़ा प्रबल इंद्रियां दा रस है, अखां दा रस, कन्नां दा रस, नासका दा रस, रसना दा रस, हलड़ी दा रस, कोई रस मुकदे ने, महारस। मैं थानू सीमा विच सुना रहा, क्योंकि सिख समाज विच इतनी गल खुली होंदी नहीं, पर जो प्रगट रूप दे संसार विच मौजूद है, ते वाम मार्गियां ने आख्या, उहदियां लहरां उसका सूक्ष्म असर ते मौजूद है। अधे तो ज्यादा पंजाब जो पतित हो गया नौजवान,
ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ।

आत्मयाकर शरीरसवस्तुक्षीण समय सिमरन्तु नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संग जीओ, बिरद बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज उन्हां दा बख्शिश कीता अज दा हुक्मनामा। ये चार पदियां दे चै, चार चरणां दे चै, चार पैरियां दे चै। किसी एक केंद्रीय ख्याल नूं, किसी एक मरकजी ख्याल नूं बार बार चार पैरियां दे, चार चरणां दे, चार पदियां दे दोहराया गया। इहदे च प्रथम पंक्ति अक्सर चौपदियां दे च अगर रहाओ ना होवे तो फिर पहली पंक्ति ही सिरलेख है, सिरमौर है, अनुमान है। युग चारे धन जे भवे, इहदे च चार युगां दा

और इस दौड़ देच इस कामी युग देच हम कहियत कल युग के कामी जो संतान पैदा हो रही है कली अंदर नान का जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा पुत ते जिन भूत है तेवी जिन भूत है कोई मीरा नहीं पैदा हो रही माता भाग कोर नहीं लैला पैदा हो रही है कोई कबीर कोई रविदास कोई भाई मनी सिंह कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे मजनू पैदा हो रहे क्यों मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे सहजे सहजे ए जद शरीरक तल तो उच्चे उठन उस समय इना दे घर औलाद आवे भगत आणगे दार्शनिक आणगे विज्ञानक आणगे संत आणगे पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे तो औलाद आएगी जिन ते भूत जिन्ना ते भूता नाल ए युग ए संसार भर गया जिन भूत जो अदृश्य रूप दे पहले कर्म करते सन दृश्यमान रूप दे ए मनुख आज कर रहे हैं जिन भूतां नु काबू करना औखा सी अजोकी औलाद नु काबू करना औखा है बहुत औखा है कठिन है ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने उस्तादां नु मार रहे ने तरह तरह दे कुकर्म कर रहे ने और किधरे भी सील नहीं संजम नहीं उसका मूल कारण है मां बाप दा जीवन प्रार्थना नहीं बन सकया वासना ही बनिया रहा मां बाप दा जीवन राममय नहीं हो सकया सिर्फ काममय होके रह गया पातशाह कहंदे ने रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज रन्ना होइयां बोधियां स्त्रियां बहुत चंचल दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना यही उना दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी जिथे वेद पढ़दियां पढ़दियां पंडित इसे जी खप गए उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई रूप पेख पेख नारी स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हुण ठीक है फिर विखाण लई निकलदी है रूप दी प्रदर्शनी शरीर दी प्रदर्शनी और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकदा कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे हां वासना चर